का चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केह बद सजा प्रथम।

कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करोरण काता जी अस्तु जितव सरणी।

करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: ओके, इट्स योर बॉय बादशाह स्टार्टिंग ऑफ द पार्टी राइट हियर ऑन द ब्रेकफास्ट विद मी जमाल ओनली ऑन ईस्ट एफएम केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स। आई एम ट्राइंग टू स्टिल फिगर आउट वेयर इज माय को-होस्ट, व्हाट इज शी अप टू। आई थिंक शी इज प्रैक्टिसिंग हर गरबा मूव्स, शी इज प्रोबब्ली प्रैक्टिसिंग हर डांस मूव्स बिकॉज़ शी इज वंडरिंग हाउ विल शी मैनेज गुजू ज़ुम्बा विद टू लेफ्ट फीट। वेल, दैट मेक्स द टू ऑफ अस राइट नाउ। आई ट्राई टू डू अ फ्यू डांस मूव्स विद दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई एम रियली rusty at my dancing, which means we need to continue the party. And Bilal Jamil says this perfectly: you can't have a party, you can't have a Friday playlist, you can't have East FM running without a little bit of H Dummy. Well, you know what, I brought our homeboy back to the playlist and on your Friday playlist on the airwaves of East FM. Enjoy this one with Har Gabru by H Dummy. Good morning.
2: Breakfast with Raymond and Jamil.

0: सबसे पहले जो पैगाम आया है जुमा मुबारक का प्यार अली भाटिया बहुत हम मशकूर हैं आपके और रूपल रूपल कहती हैं आज फराही डे है वन लाइन कहते हैं बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना या ये तो आपकी फरमाइश हम टाल नहीं सकते ठीक है करती हूँ ये भी समझ ये बात है कि जो सेट हो जाती है एक दफ़ा लिस्ट तो फिर उसको बदलना भी कोई बात नहीं करते हैं रूपल की खातिर वो हमारी रेगुलर लिसनर हैं और मुनीर मुनीर क्या कहती हैं कहती हैं कि माओ की ज़रूरत ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती समझो आपकी माता हैं उनकी ज़रूरत पूरा जीवन रहती है उनकी मोहब्बत ऑक्सीजन की तरह होती है जिसकी ज़रूरत आखिरी सांस तक रहती है मुनीर बिल्कुल सही और कहते हैं नहीं वो वापस दो बार भेज दिया है मैसेज मुनीर थैंक यू सो मच इंडीड और टीना आपने जुमा मुबारक तमाम बेमिसाल अंदाज लिसनर्स को बहुत समझ ओ गॉड किसी ने मुझे आंसर दे दिया है उफ क्या बात है आपकी ऑफ कोर्स हु इज 100 टुडे ओ रेहान रेहान गुड एज इट इज रेहान बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं तो गुड रेहान यू आर द फर्स्ट कॉलर हु हैज गिवन मी द आंसर बिफोर द क्वेश्चन इमेजिन हाउ ब्राइट यू आर सोनल मोदा गुड मॉर्निंग कहा है टेक केयर और बेमिसाल के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर हैं सुरेश पटेल फ्रॉम मुंबासा गुड मॉर्निंग इज इट एल्टन जोन्स नो नो लखबीर अब लखबीर आपने भी सही जवाब दे दिया है भरत गंगाराम मुझे लगता है उन्होंने भी जुमा मुबारक कहा है और शायद आपने कहा है राज कपूर नहीं नहीं नहीं मैंने कहा वो जिंदा हैं राज कपूर तो नहीं ना जिंदा वो तो जिंदा हैं आज अपनी 100वीं बर्थडे मना रहे हैं
1: सोचा है कि लोग हमारी जिंदगी का सिर्फ वो हिस्सा देखते हैं जो हम दिखाते हैं मगर अल्लाह हमारे दिल का हर कोना देखता है वो जानता है कि किस बात ने हमें अंदर से तोड़ा किस दुआ को हमने आंसुओं के साथ छुप कर मांगा और किस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द था दुनिया को सिर्फ हमारा जाहिर नजर आता है लेकिन अल्लाह नियत खौफ उम्मीद और शर्म सब जानता है इसलिए अगर कोई समझ ना पाए तो दिल छोटा मत करो क्यों कि जो रब तुम्हारे हाल बिना बोले समझ जाए उसके होते हुए तुम कभी अकेले नहीं हो शुक्रिया जुमा मुबारक सुबह का प्यार सलाम सलमा आमद किस्म
0: कुछ उस पर छोड़ दो ये कहा है सलमा ने कि वो हर आपके दुख को समझता है परवरदिगार है भगवान है परमात्मा है जो भी आप कहते हैं और टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस यू कांट ओन इट फॉर यू कैन यूज इट ये पहले भी सना काफी बार फॉरवर्ड आ चुका है सलाम अस्सलामुअलैकुम जुमा मुबारक और आपने बता दिया है कि आज का आंसर क्या है यासर थैंक यू सो गुड आई मीन आई विल रीड व्हाट यू सेंट थोड़ी देर के बाद ठीक है चंद्रिका वासंत गोसाई जुड़ चुकी हैं और एंजॉय कर रही हैं बहुत खूब बाकी के मैसेजेस थोड़ी देर के बाद वरना ये गाना भी मैं आपको सुना नहीं पाऊंगी

गाना याद आया था रूपल को, उनकी फरमाइश थी। और स्वामी कृष्ण सर्वे कहते हैं कि आपको पता है मेरे दामाद ने मुझे एक तोहफा दिया जो मैं कभी नहीं भूल सकता, इतना कीमती तोहफा है, और वो है 5 volumes सर डेविड एटनबरा की डॉक्यूमेंट्रीज की। व्हाट अ गिफ्ट, 5 volumes, बहुत लकी हैं आप। ओके, ये थी बात कृष्ण सर्वे की। अब चलते हैं मिस्टर एमएल विश्वकर्मा इन इंडिया, कहते हैं कि देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे लेटर्स जो होते हैं ना, कहते वो दिखाई नहीं देते। शायद यही इशारा है, शायद यही एक इशारा है कि बढ़ते जमाने के साथ, उम्र के बढ़ती उम्र के साथ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। ओके, आपका ये इशारा है, ये जो इंग्लिश हम लिखते हैं ना उर्दू को इंग्लिश में, तो ज़मीन जो स्पेलिंग होते हैं ना ज़रा मुश्किल आन पड़ती है। पर आपने कहा है कि देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आप छोटे अक्षर कम ही देखते हैं, इसलिए छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करें, यही कह रही है आपकी उम्र आपको। हरीश वरसानी, आपने गुड मॉर्निंग कहा है सबको और जुमा मुबारक, और कहा है कि तुम्हारे करीब आता हर शख्स, तुम्हारे करीब आता हर शख्स मेरी रूह को चुभता है। आप इतने जेलस हैं, कहती हैं नहीं, हरीश वरसानी हैं, वो कहती हैं कि कोई आपके करीब आए ना मेरी रूह को चुभता है। वैसे जिसको प्यार करें उनके करीब किसी को देखकर दिल दुखता है, वेरी ट्रू। और किसका मैसेज आया है, इनका मैसेज है यूनस, यूनस का मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इंसान की ज़िंदगी खौफ और उम्मीद के बीच बीच में गुज़रती है, बिल्कुल खौफ और उम्मीद के बीच में गुज़रती है। यूनस फ्रॉम मुंबासा, बहुत अच्छे यूनस, कभी कभी करते हैं एक साल में एक मैसेज भेज

देते हैं। सर डेविड एटनबरा का आंसर दिया था मुनीर ने भी, और समिन आगे जो हैं हमने जो करना है वो भी एक सवाल ही है, लेकिन पहले

0: और सुरेश पटेल आपने भी सही कहा है कि आज 100 साल के हो गए हैं सर डेविड एटनबरा और समझ इतना उनको शौक है ये नेचर का जो हमारे हमारा जो माहौल है जो हमारी एनवायरनमेंट है इसके साथ क्या हो रहा है कैसे लोग इसको तबाह कर रहे हैं बस सर डेविड एटनबरा उस पर ही डॉक्यूमेंट्री सारी उम्र बनाते रहे हैं बड़े होशियार खैर वो हो गई बात उनकी मैं आगे जो बात करने वाली हूँ समय वो उन चेक्स की है कितनी बार आपको मिले होंगे ख़ास तौर पे अगर आप कारोबारी हैं बिजनेस करते हैं तो आपको चेक्स मिले होंगे जो बाउंस हो जाते हैं ठीक है और फिर लोग पता नहीं कैसे कैसे फेक चेक्स भी बना कर दे देते हैं लोगों को झांसा थोड़ी देर के लिए खैर एक औरत ने उपाय ढूंढा है कि क्या कर सकते हैं उसका नतीजा क्या होगा ये तो नहीं पता लेकिन मैं आपको बताऊंगी उसने किया क्या है
1: Bangla Bollywood hits and ballads to sing along with
2: East FM
1: Kenya's premier
2: Asian mix
1: East FM Kenya's premier Asian mix
3: Nairobi tayar thai jao ek aitihasik dhamaka mate first time ever in Kenya East FM ane e hello prastut kare che Gunju Zumba Zumba to tame ghana joya hase par shu tame kyare gujarati geeto par zumba kariyu che ane ji na aa garba નથી આ છે ઝુમ્બાની એનર્જી ઓન સુપર હિટ એન્ડ પોપ્યુલર સોંગ્સ ફ્રોમ ગુજરાતી ફિલ્મ્સ વિથ ધ ઝુમ્બા ગુરુ આરતી ખીમજી 100% ગુજ્જુ સ્વેગ ગુજ્જુ વાઇબ્સ અને સાથે ગરમા ગરમ જલેબી ગાંઠિયા નું બ્રંચ તારીખ 10 મે 2026 10 વાગ્યા 3 વેન્યુ પાવર બોક્સ ટિકિટ પ્રાઇસ 1200 શિલિંગ અર્લી બર્ડ ઓફર અને 1500 એટ ધ ગેટ ગુજ્જુ ધમાલ ફિટનેસ અને ફૂલ ઓન એન્ટરટેનમેન્ટ બધા માટે નવા હો કે પછી પ્રો ફટાફટ ટિકિટ બુક કરાવો ઓન ticketier2.com
1: બેક ટુ કેન્યાઝ પ્રીમિયર એશિયન મિક્સ ઈસ્ટ FM
2: ઈસ્ટ FM

से के बाद आपको ये दो गाना भी सुनाया मैंने आपको, और कृष्ण सर ने कॉल किया कहते बाउंस चेक्स, मैं कहता हूँ मेरे लाखों के पड़े हैं अभी भी, क्यों? कहते जब बाउंस हुए हैं तो मैं अपने वकील के पास गया, तो वकील कहता है कि हाँ हाँ मैं रिकवरी करवा सकते हैं, करवा सकता हूँ आपके लिए, 50% मेरा होगा। अरे कर्जा उन्होंने दिया किसी को, आप कह रहे हो कि उसको रिकवर करने के लिए आधा आपका, समझ नहीं आती इस तरह। खैर कृष्ण सरोवर कहते हैं वो वहीं पड़े हैं, मैंने नहीं रिकवर किए, बेस्ट। अच्छा बात ये हुई समिन फेक चेक्स की, तो फेक चेक्स की आपको पाकिस्तान की हुकूमत याद है, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत ने इतने ज़्यादा चेक्स इशू कर दिए, गरीब खुश हो गए, गरीबों के लिए थे। तो फिर वो एमपी लेकर आया तमाम चेक्स अपनी कंस्टिट्यूएंस से लेकर, और कहने लगा ये देखो ये सारे बाउंस हो गए। उसने ऐवान में पार्लियामेंट में सारे चेक्स उड़ा दिए हवा में। समन अब एक बीवी अदालत पहुंची है, बीवी जी क्यों वो पहुंची है कि मेरे शौहर ने मुझे फेक चेक दिया। कैसे? कहती हैं कि देखो इनको, इन्होंने कोई किया गलत काम, कोई गैर कानूनी काम, इनको जुर्माना हो गया तो जुर्माना भरना था। समझ, जब भी शौहर को जुर्माना होता है तो फिर वो बीवी के पास आता है, क्योंकि उसने दो दो चार चार इकट्ठे करके रुपीज़ या शिलिंग्स रखे होते हैं, उसके पास बचत के पैसे होते हैं, तो स्ट्रेट अवे वो बीवी के पास आता है। खैर अब इस पर चोरी का इल्ज़ाम था शौहर पर, फिर भी बीवी ने क्या किया, कहती हाँ हाँ मैं क्या करूँ, दूंगी आपको। बीवी गई अपने माँ बाप के पास, जाके उनकी मिन्नतें की कि मेरा शौहर उसने चोरी में पकड़ा गया, इसने चोरी नहीं की, उसने ये भी कहा होगा, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ कि वो पता क्या उसका कोई कसूर नहीं, बड़ा नेक है, लोगों ने इसको फंसा दिया, प्लीज़ अब जुर्माना भरना है तो पैसे दीजिएगा। समिन माँ बाप ने पैसे दे दिए, इसने शौहर को दिए। अब शौहर वो रोज़ पूछती है कि मुझे लौटा दो पैसे, लौटा दो, तो कहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है। फिर आखिरकार एक चेक दिया 280,000 रुपीज़ का चेक दिया और वो बोगस निकला, बाउंस हो गया। अब औरत क्या करे, वो गई है अदालत, अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन समझ मुझे लगता है कि बीवी अदालत जाए इस वजह से, ये पहला वाक्या मैंने सुना है।

0: और कृष्ण सरोय के साथ बात करते हैं सामिन ईमानदारी पर और धोखेबाजी पर. जैसे कि अपनी बीवी को बाउंसिंग चेक, बाउंस होने वाला चेक दे दिया, बोगस चेक, तो वो गई है अदालत में. कृष्ण सरोय, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ?
1: मुझे एक दफा नहीं, बहुत दफा हुआ.
0: अच्छा.
1: रुस्तम हीना वकील है, बहुत बड़ा, आपको पता है इंडियन का
0: जी.
1: उसके पास मैं केस लेके गया, बोलता है आधे आधे कर लो, मैं रिकवर कर दूंगा.
0: ओ गॉड. अच्छा. तो
1: दूसरा प्रवीण जी,
0: जी
1: एक मुसाइका में फैमिली रहती है, डोंट मेंशन द नेम.
0: डोंट
1: जी. हरजिंदर से, रिकी से उसके ब्यूरो में आके ना रो कर, उनकी कंपनी बिक रही है, 5 लाख ले गए यू नो कैश.
0: ओह माय गॉड. इतने तो देने भी नहीं चाहिए.
1: मैंने तो उसको बोला ना क्यों दिए उसको, यू नो इतने रही है,
0: राइट,
1: उसको दूसरा अरेंजमेंट अपना करना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: प्रवीण जी ना तो चेक देखी गई, ना कुछ किया, और हरजिंदर तो दुनिया से चला गया. उन लोगों ने कभी ये भी नहीं पूछा के क्या सिचुएशन है, कब हम पैसे वापस करेंगे. आज तक शर्म नहीं है उन लोगों को.
0: देखे बिल्कुल. ओके. देखा ना कृष्ण सरोय, कहते हैं कि 5 लाख दिए, बेटा दुनिया से चले गया, लेकिन उन्होंने ही नहीं कहा कि हमने उसका कर्जा चुकाना है.

0: समय देखते हैं कि कृष्ण सर्वे की बात रह गई थी बीच में. जी कृष्ण
1: जी, थोड़ी सी बात रह गई थी बीच में.
0: जी जी,
1: ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है प्रवीण जी.
0: वाकई जहां बेईमान है.
1: हमारे ज्वेलर थे रिकी के, उनके पास मेरी डायमंड रिंग और कुछ और सोने का सामान था.
0: हाँ.
1: वो रिकी की डेथ के अगले दिन आकर हमारे घर में डिलीवर कर गए कि ये उसका सामान था, ये इसका लेने देना था, ये ले लो.
0: ओह माय गॉड, व्हाट ऑनेस्टी.
1: दो चार लोग और थे उसके फ्रेंड.
0: हाँ.
1: जिनका उनके साथ से लेना देना था, तो वो आए मेरे पास. मैंने प्रूफ ले आऊंगा आपके, जितना भी है आपको पैसे.
0: हाँ.
1: जल्दी ही अरेंज करके आपको सबको दे दूंगा.
0: ओह गॉड, इमेजिन.
1: मैंने सबको दे दिए पैसे.
0: राइट, बिल्कुल.
1: रिकी का एक दोस्त था प्रवीण जी, मुझे पता था उसके पैसे है, उसने लेने हैं रिकी से, यू नो. लेकिन मैंने उसको बोला, बेटा तुम्हारे पैसे हैं, मुझे पता है. और रिकी ने बोला था कि देने हैं आपके.
0: जी जी.
1: बोलता है, अंकल मेरा कोई पैसा नहीं है, यू नो, मेरा दोस्त ही चला गया, क्या करने.
0: ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स.
1: ऐसे अच्छे लोग भी
0: हैं बिल्कुल.
1: दुनिया खत्म नहीं हुई है, यू नो.
0: राइट राइट.
1: कुछ लोगों को ना शर्म ही नहीं है, यू नो.
0: जी जी जी जी. अच्छा, वो है ना, जो अब नाम क्योंकि नहीं ले सकते, इसलिए चलिए समिन. अब एक फरमाइश है जो फरहंदा शेख की है. उन्होंने कहा था कि मेरी आंट, उनकी वफात हो गई लेकिन उनका ये फेवरेट गाना था.

0: It's big, it's phenomenal, and it's coming to Sarit Expo Hall this 31st of May on the long Madaraka weekend.
1: Are you ready?
0: Are you ready for the most awaited experience of 2026? One night only with the Grammy winner, Kirk Whalum. Kirk Whalum. Kirk Whalum. Multiple Grammy nominee, Karen White. Multiple award winners and East Africa's hottest names right now, Bien and Ali Kiba. An exquisite night of culture, Afro-pop, jazz, and soul. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab yours now at ticketyetu.com. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gittel.
2: Leaders are being urged to embrace unity and peaceful coexistence among themselves in order to foster peace across the country. Mwingi Central Constituency Member of Parliament Jomo Tambo notes that many acts of goonism are often linked to political rivalry, with certain individuals allegedly positioning themselves as kingpins in specific areas and restricting the presence of opposition leaders. Mutambo emphasizes the need to address the root causes that trigger goon behavior. Kenya can avoid repeated diplomatic blunders by embracing track one diplomacy and appointing more career diplomats. International relations expert Terry Kirongo says structured diplomatic engagement promotes clear collaboration and protects the country's image abroad. His remarks follow the proposed Foreign Service Amendment Bill, seeking to reserve 70% of ambassadorial positions for career foreign service officers.
3: We need to get back to the traditional aspect and the formal aspect of diplomatic engagement, and that entails clear channels of collaboration, communication and engagement with other people, whether bilaterally or multilaterally.
2: Nandi Senator Samson Cherargei has defended his motion seeking to withdraw or significantly reduce the retirement benefits and allowances of former President Uhuru Kenyatta. In a statement posted on social media, the vocal lawmaker said the motion is still active and is currently under consideration by the Senate Business Committee. He maintained that the proposal raises serious constitutional issues and concerns over respect for the rule of law. His response came after senior counsel and member of parliament Otiende Amollo dismissed the motion, describing it as a waste of time. The government has defended the upcoming Africa Forward Summit in Nairobi, saying it is aimed at strengthening relations between Africa and France. Speaking on NTV, Foreign Affairs Principal Secretary Korir Sing'oei said the summit presents an opportunity for Africa to take the lead in shaping international partnerships as the continent becomes increasingly assertive on the global stage. He added that Africa's engagement with developed nations reflects its commitment to promoting inclusivity in addressing global crises.
4: In the context of Euro-Africa dialogue, the Africa-France summit is therefore holding. It's actually a building upon to ensure that we are able to optimize in these relationships.
2: That's the news update on East FM.
1: East FM News. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
5: Bemisaal Andaaz with Parveen Atom.
6: Announcement samin wo hai ke kisi ko थर्ड पार्क हॉस्पिटल है. थर्ड पार्क हॉस्पिटल आगा खान के सामने है. अगर आप देना चाहते हैं खून तो वहाँ एक मरीज को शदीद ज़रूरत है खून की. कोई भी ब्लड ग्रुप हो आप दान कर सकते हैं खून. और ये है थर्ड पार्क हॉस्पिटल आगा खान हॉस्पिटल के सामने. कोई डॉक्टर मुख्तार मिर्ज़ा की बहन है, उनको ज़रूरत है अख्तर को. तो समझ अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ थर्ड पार्क हॉस्पिटल. और जो मंजुला विश्वकर्मा ने कहना है वो आप सुन लीजिए.
7: सबको नमस्कार परवीन जी, और जुम्मा मुबारक. हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती. हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, पर एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है.
6: नीला शेथ भी, स्टॉप गिविंग व्हाट दे डोंट डिजर्व. जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको देना बंद करो, अपना वक्त हो या पैसा हो या जो भी है. बचपन की मोहब्बत को सोनल, आपने आपको पसंद आया है पुराना गाना, बहुत ही प्यारा. Rasila, good morning. What a super start of the musical journey. Kya tareef karun us khuda ki jisne tumhe dubara. Thank you. God bless you. Rasila, bahut bahut meherbani aapki. Shobhna and Dinesh, aapne kaha hai ki sabhi ko good morning. Aur kehte hai, dance in the rhythm of life and enjoy all this world has offered you. Kehte hai ki nacho us leh par jo ye duniya aapko deti hai. Bahut khoob. Aur jo bhi diya hai aapko prakruti ne, usko enjoy karein. Juma Mubarak ka message aaya hai Bristol, United Kingdom se, Naju ki janib se. Kehte hain love and duas to all the listeners around the globe, East FM. Jo bhi sun rahe hain East FM, unko Naju ki greetings aur Juma Mubarak. Shukriya Chandrika Vasant Gosai, aap bhi enjoy kar rahi hain. Aur Pyar Ali Bhatia.
8: Praveen ji, bachpan ki mohabbat ko ye gana film Bejubara ka hai, jisko Lata Mangeshkar ne gaya hai, जिसको शकील बदायूनी ने लिखा है और जिसकी धुन नौशाद ने बनाई है. ये गाना मीना कुमारी पे फिल्माया गया है. गाना बहुत अच्छा लगा. पुराना गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. प्रवीण जी, तुम ही मेरे मीत हो, तुम्हें मेरी प्रीत हो. ये गाना फिल्म प्यासा पंछी का है, 1961 की मूवी है, जिसको सुमन कन्यानपुर और हेमंत कुमार ने गाया है और जिसको कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है. ये ब्यूटीफुल हेमंत कुमार का डिवेट सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
6: आप भी खुश हैं. बहुत अनयूजुअल है समय आज के गाने काफी ज्यादा जो बहुत बरस पहले आपने सुने थे. मिस्टर एम एल विश्वकर्मा, आपने कहा है सिंगर हेमंत कुमार और उनके साथ सुमन कल्याणपुर. अभी जो मैंने आपको सुनाया तुम ही मेरे मीत हो, एम एल विश्वकर्मा कहते हैं कि ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई, प्यासे पंछी, और महमूद और अमिता की जोड़ी थी. वेरी गुड मिस्टर एम एल विश्वकर्मा. और साथ ही आती हैं हुस्ना मोहम्मद.
9: वालेकुम परिन जी, आप ठीक हो परिन जी? जुमा मुबारक परिन जी. और ये गाना मैं अपने लिए मांग रही हूँ आपसे. मेरी माँ को कल 9 तारीख मई की 20 साल हो जाएंगे, वो हमें छोड़ के चली गई, इसलिए ये गाना मैं अपनी माँ के लिए मांग रही हूँ आपसे. प्लीज ये गाना मेरी माँ के नाम कर दो. अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज.
6: ऑफकोर्स हुस्ना मोहम्मद, खुदा आपकी माँ को जन्नत में जगह दे. वो जिंदगी के मेले, शायद आपने उस गाने की बात की है, ये जिंदगी के मेले वाकई.
10: हेलो प्रिय जी, वेलकम, जुम्मा मुबारक. कितना सोना गाना तुसी लाया, ये जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे. मेरा भी बहुत फेवरेट है. एदी वर्डिंग एकदम सच्चिया गल्ला है, 100% ट्रू गल्ला है. अरे गीत बिच लिखिया होया वा, कहना संसार संसारे कोई जीता कोई हारे. थैंक यू जी.
6: उन्होंने ब्लैंक मैसेज भी भेज दिया है. ओके, इनके साथ कौन आए हैं जी, नाम पढ़ते हैं. और ये हैं फारूक बोलीम. वाह क्या बात है परवीन जी, व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग, जिंदगी ये जिंदगी के मेले. अच्छा आप सबको पसंद आया. मैं सोच रही थी कि बहुत सैड है और मूड ज़रा मैं बनाने की जो कोशिश कर रही थी, बट ऑल ऑफ यू लव्ड इट. और किसी ने विदेश से बगैर नाम के भेजा है आपके लिए, जुमा मुबारक एंड ग्रीटिंग्स. साथ ही हैप्पी फ्राइडे, गुड मॉर्निंग, प्लीज प्ले उदित नारायण टुडे. लेकिन कौन सा गाना, तेरी नजर. अच्छा ये अगर पॉप टाइप सॉन्ग होगा तो मेरे लिस्ट में शामिल नहीं मैं कर सकूंगी. आप कोई सीरियस सा गाना करें उदित नारायण का, जो उन्होंने गाया हो, जिसका कोई मतलब भी हो और अच्छी पोइट्री हो, फिर मैं वो सुना दूं स्पेशली. ठीक है, गाने के बोल लिख के भेजिए किसी अच्छे गाने के.

0: ओके बोले चूड़ियां आ गया है गाना, लेकिन ठीक है ऐसे गाने जो फिट हो जाएं हमारी लिस्ट में, उदित नारायण इसमें हैं, उनकी आवाज़ है, तो मंजू डगर करेंगे, वो भी बात कर लेंगे पूरी आपकी आगे, और फरखंदा शेख।
1: शेख बोल रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ये गाना लगाया, ये जिंदगी के मेले, परवीन देखा जाए तो ये जिंदगी का जो मेला है ना, हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, एक दिन आखिर सबने जाना है, लेकिन इसकी एक एक वर्डिंग जो है वो एकदम राइट है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको खुश रखे।
0: यही होता है ना टैलेंट एक शायर का, समझ, वो अनयूजुअल बात कहता है, वो हकीकत भी बताता है लेकिन अनयूजुअल तरीके से, जो उसका समझ चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है वो एक शायर को अजीम बना देता है या फिर एवरेज। ओके नहीं, इतने ज़्यादा गाने उदित नारायण के नहीं कर सकती, ये पुराने गानों का है। थैंक यू सो मच इंडीड। जो एक समय एक मैं आपको सुनाना चाहती हूँ मेहदी हसन का की गज़ल, तो कितने बरस हो गए, करीब 10-12 बरस हो गए मैंने मेहदी हसन की और भी गज़लें सुनाई, तो किसी लिसनर ने मुझे कॉल किया और कहा कि अच्छा एक वो भी कर दो, मैंने कहा कि ये मैंने काफ़ी बार सुना दिए, मैं आपको एक अनयूजुअल उनका गाया हुआ सुनाती हूँ। वो इतने खफा हो गए सुनने के बाद, कहते हैं नहीं इट्स नॉट हिज बेस्ट, मेहदी हसन का ये बेस्ट नहीं है, बस हमें बेस्ट ना भी हो सेकंड बेस्ट भी हो तो सुनना चाहिए ना। आप मुझे बताएं, आप अगर पहली बार सुन रही हैं ये तो मुझे बताएं ये अच्छा है, नहीं है, एवरेज है कि बहुत अच्छा है।

0: को दर्द मिला अपनों से मिला. व्हाट ब्यूटीफुल लिरिक्स. कभी कोई इस पर एतराज कर सकता है? कभी नहीं. पर किसी ने किया, कोई बात नहीं. नॉट दैट इट अफेक्टेड मी, लेकिन मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई इसको पसंद ना करे.
1: अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक. ये मेरे नाम पे गाना. थैंक यू डियर.
0: या जो दर्द मिला अपनों से मिला, वो बिल्कुल सही अज़रा करीम. और साथ देर इज वन सॉन्ग बाय नुसरत फतेह अली खान, संग बाय राहत फतेह अली, इज कॉल्ड खंडे उत्ते उत्ते. अच्छा, आई डोंट नो हाउ मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, लेकिन अगर आप सुना दें तो ओके. कल्पना देखती हूँ, अगर इसको ढूंढना पड़ेगा तो फिर जिस दिन भी मिलेगा कर देंगे. या सर, एज पर माई व्यू दिस इज एवरेज फिल्मी नंबर ऑफ मेहदी हसन. ऑन वंस आई डिड रिक्वेस्ट रंजिश ही सही विच यू डिड नॉट प्ले बिकॉज ऑफ टाइम. रंजिश ही सही. ओके, ठीक है यासर, करती हूँ कोशिश. बहुत ज्यादा गिले होते हैं. यू डिड नॉट प्ले माई रिक्वेस्ट.
2: No one plays more of the beats you dance to but East FM.
3: East FM,
2: Kenya's premier
3: Asian mix.
2: Asian mix.
4: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: It's 11:20.
5: An A-list Afropop lineup, soul, and jazz. The crispiest state-of-the-moment concert sound. Premium music experience. Infinite red carpet. Extraordinary elegance, flawless setup, and every detail in between. It's a world-class experience at one night only. With multiple Grammy nominee Karen White, Grammy winner Kirk Whalum, multiple award winners, and East Africa's hottest artists right now, Bien and Ali Kiba. One queen, three kings. One unforgettable night-only experience. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com.
2: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
3: East FM.
2: East FM.

और जगदीप नांद्रा बिल्कुल करेक्ट बोथ ऑफ देम और साथ बीना पटेल ऑफ कोर्स करेक्ट है आपका सोनल मोदा आपने कहा है ये टीना मुनीम है नहीं टीना मुनीम नहीं है सुलक्षणा पंडित है भूपी पटेल फ्रॉम किसुमु नहीं सुलक्षणा पंडित नहीं है फिर चलते हैं नीला शेठ के पास आपने कहा है कि ये जया प्रदा

नहीं, जयप्रदा भी नहीं है। फिर सैली, आपने एक तो बिल्कुल करेक्ट दिया है, लेकिन जितेंद्र नहीं है, सैली डार, वो फीमेल गलत हो गई है। अच्छा देखें, नहीं फीमेल करेक्ट है लेकिन जितेंद्र नहीं है, सो फीमेल इज करेक्ट। अब ये मेल कौन है, वो तो इजी है एक्चुअली, टीना। आपने कहा है ये सारिका है, नहीं। लखबीर, आपने कहा है टू योर प्रोग्राम, माई सिस्टर इज ट्यून टू योर प्रोग्राम एंड शी इज एंजॉइंग ऑल द सॉन्ग्स। लखबीर एंड यू एंड योर सिस्टर, अगला अगला जो गाना है दो दिल दीवाना मचल गया, वो मैं आपको नजर करती हूँ, डेडिकेट वन सॉन्ग टू यू। शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्या कहती हैं, माउंट एवरेस्ट कंटेन्स मरीन रॉक्स proving that the highest point on the earth was once at the bottom of the ocean. Marine rocks hain, yani jo samandar mein aapko patthar milega wo Mount Everest par milta hai. Kyun? Kehte hain ki isse pata chalta hai ki itihas mein ek zamane mein ye pani ke niche tha, samandar mein tha Mount Everest. Reena, aapne kaha correct answer, bilkul correct. Altaf Sameja, आपने कहा राजेंद्र कुमार एंड शर्मिला टैगोर, नो दोनों नहीं हैं। और भूपी पटेल फ्रॉम किसुमू जी, और आपने कहा है अरुणा ईरानी, नहीं अरुणा ईरानी नहीं है। नीला शेत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, सो कोशिश करें। अब ये गाना जो हम डेडिकेट करते हैं लखबीर,

कहती हैं सलमा अहमद क्या आज गाने आप सुना रही हैं उनके लिरिक्स उम्दा हैं एक दिन तो समझ जाएगी दुनिया तेरा अफसाना ब्यूटीफुल सॉन्ग था सलमा अहमद आपने कहा है ये अभी अभी जो मैंने सुनाया है वो कन्यादान का था आपका फेवरेट गुड टू नो दैट सोनल मोदा आपने कहा है कि ये टीना मुनीम है और अब करेक्ट कर लिया है सोनल मोदा आपका

और उंगा टरुंगा इसे आरफा आपने कहा है कि कन्यादान का गाना सुनाकर आपने दिल खुश कर दिया और शशि कपूर पर फिल्म आया गया था और आपने बताया है कि इनकी बचपन में शादी हो चुकी है शायद वैजयंती माला की और बड़े होकर ये दे फॉल इन लव. अब मुझे नहीं पता उन्हीं के साथ या किसी और के साथ इनका इनका प्यार हो जाता, पर बचपन में शादी बाल विवाह इसे कहते थे, बचपन में कर देनी तय किसी की शादी.

मैंने अगर ये म्यूजिक आपको पसंद आया है तो ओपी नैयर का है. कमाल की फिल्म थी समय सावन की घटा, जिसमें मनोज कुमार और मुमताज, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर भी हैं, लेकिन ये सावन की घटा से लिया गया था, आशा भोसले का गाया हुआ. अब आगे सुनिएगा बहुत ही अनयूजुअल गाना, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो.

मुझसे क्या शिकवा पर है शिकवा कुलवंत सरवे को, मुझे लगता है कि उन्होंने गाना कहा था अजनबी तुम जाने पहचाने लगते हो, मुझे लगता है अगर वही है तो वो मैं गाना जरूर सुनाऊंगी चंद दिन पहले। और यहाँ पर है शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अभी अभी समीन मैंने जगजीत कौर का गाना आपको सुनाया था फिल्म शगुन का, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तो ये 1964 की एक फिल्म थी शगुन जिसमें वहीदा रहमान और कमल जीत जिनके साथ बाद में उन्होंने शादी भी की थी वो हैं सितारे, लेकिन ये गाना तुम अपना रंजो गम कोई एक्ट्रेस है निवेदिता उन्होंने गाया, उन पर फिल्माया गया था, तो ब्यूटीफुल सॉन्ग और कभी कभी ऑफकोर्स इसको भी शामिल कर लेते हैं। और तलत महमूद आगे आ रहे हैं

0: बात करते हैं अश्विन दोषी के साथ. अश्विन उफ क्या कोई कहे इस गाने के बारे में.
1: ये तो तलत महमूद का वन ऑफ द बेस्ट है तो ये गाना
0: वाकई वी कैन एक्चुअली
1: ये गाना सभी जब ये रिलीज हुई थी फिल्म थी दिले नादान 1953 में ये रिलीज हुई थी.
0: अच्छा दिले नादान कौन थे.
1: यस उसमें तलत महमूद खुद काम कर रहे थे एज ए हीरो और साथ में थी श्यामा एंड वन अनदर एक्ट्रेस हु केम फॉर अ कपल ऑफ फिल्म्स उनका नाम था पीस कवल. पीस कवल हमने बात की थी एक बार
0: तो
1: या उनका ट्रायंगल था.
0: अच्छा
1: पिक्चर में तो कुछ दम नहीं था पर जी लेकिन म्यूजिक था गुलाम मोहम्मद का और गीत सभी लिखे थे शकील बदायूनी
0: और गुलाम मोहम्मद.
1: यस जो गुलाम मोहम्मद नौशाद अली के असिस्टेंट थे.
0: जी
1: असिस्टेंट थे. तो ये गीत के लिए ये फिल्म थोड़ी चली बाकी
0: कुछ खास नहीं था
1: है ना. लेकिन तलत महमूद का गाना ये अब तक
0: लोग याद करते
1: याद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और सुनते हैं.
0: बिल्कुल सही
1: एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट.
0: बिल्कुल आई एग्री विद यू.
1: मजा आ गया.
0: अच्छा बहुत अच्छे. थैंक यू अश्विन दोषी और शबीर अहमद. ओके कोई बात नहीं. मंडे सही. सलमा अहमद कहती हैं कि यू गॉट माय टेलीपैथिक मैसेज था. आई वाज गोइंग टू रिक्वेस्ट दिस सॉन्ग. कोई बात नहीं सलमा. ये होता है मेजबान और सुनने वाले के दरमियान. अब कुलवंत सरोय की खास फरमाइश सुनिए.

लगी भूख लगी, भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।